0: वो रहती है। और लेलत कद्र में जो मसनून दुआ है, शेख साहब ने यहां पे बयान तो किया कि दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन यह बयान नहीं फरमाया कि कौन सी दुआ है। तिर्मिजी और हाकिम में नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लेलत कद्र में जो मसनून और मुस्तहब दुआ है वो यह है, अल्लाहुम्मा इन्नक अफून तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह तआला तू बेशक बख्शने वाला है और बख्शिश को पसंद फरमाता है, बस मेरी बख्शिश फरमा दे। यह था लैलतुल कद्र के मुतालिक। और आखिर में याद रखें, लैलतुल कद्र जैसे और भी औकात हैं फजीलत के पूरे साल में, देखें वो कौन कौन से वक्त हैं। अल्लाह ताला की तरफ से महज इनाम और एहसान है, उनको हाथ से ना जाने दें। रात में लैलतुल कद्र है, दिनों में अरफात का दिन है, आशूरा का दिन है, रोजे रखने की बड़ी फजीलत है, छह दिन शवाल के रोजे रखने और हर महीने में तीन दिन अयामुल बीद के रोजे रखना, सोमवार जुमरात का रोजा रखना, ये जो अयाम है इनकी फजीलत है। पूरे मुहर्रम के महीने की फजीलत है कि आप जितनी ज्यादा रोजे रख सके रखें। पहले 10 दिन जुलहिज्जा के जो पहले 9 दिन है उनकी खास फजीलत है कि बेहतरीन दिन है पूरे साल के। ये जो खास औकात हैं, ये खास मौसम है, जैसे कि तजारत के मौसम आते हैं ना, सर्दियों से पहले ताजिर जो है अपनी फैक्ट्रियों में, जो खासतौर पे जो गारमेंट्स की फैक्ट्रियां होती हैं, वो सर्दी की कपड़ों की बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मौसम सर्दी का आ रहा है, तो फिर लॉन वगैरह कपड़े कौन खरीदेगा सर्दी में, इसलिए वो अपनी मशीनें जो हैं उनमें या खासतौर पे वो इसके अहतमाम करते हैं कि इस सीजन के मुताबिक हम क्या पेश कर सकते हैं कस्टमर को। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहु सुभानहु व तआला ने हमें मुख्तलिफ सीजन दिए, मौसम दिए हैं इबादात के, नवाफिल के खास तौर पे, और उनसे सिर्फ वही लोग फायदे उठा सकते हैं जो अकलमंद हो, जिनके पास कल्ब सलीम, जो कल्ब सलीम और अकल सलीम के मालिक हैं। वो माय ज़क्करो इल्ला उलुल अल्बाब, और नसीहत वही हासिल करते हैं जो अकलमंद हो। अल इतिकाफ जी,
1: इस्तिग़फ़ार और तौबा में क्या फर्क
0: है? इस्तिग़फ़ार और तौबा में यह फर्क है, इस्तिग़फ़ार आमतौर पर अगर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाए इस्तिग़फ़ार और तौबा अलग अलग, तो फिर दोनों का एक मायना है कि बख्शिश, अल्लाह ताला से माफी, गुनाहों से बख्शिश। और अगर दोनों एक साथ इस्तेमाल हो जाए तो इस्तिग़फ़ार हर उस गुनाह से माफी जो आपको याद है या याद नहीं है, और तौबा उस गुनाह से माफी जो आपको इस वक्त याद है, करण जिसे आप माफी मांगना चाहते हैं। बाज़ उलमा यह तफरीक करते हैं। अगला दर्स है अल एहतिकाफ। रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र भी हमने इस वक्त जान ली है, उस और इसके मुतालिक अहम अहकाम मुख्तसरन बयान किए। अल एहतिकाफ, एहतिकाफ के मुतालिक हम जानना चाहते हैं, नंबर एक हकीकत अल एहतिकाफ, एहतिकाफ की हकीकत क्या है, नंबर दो शुरूत अल एहतिकाफ व सुननी व मुबतलात, एहतिकाफ की शर्तें क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं और मुबतलात क्या हैं, एहतिकाफ बातिल कर देने वाले कौन से उमूर हैं। जैसा फरमाते हैं तारीफ हो, इसकी तारीफ अल एहतिकाफ फिल लुगा नुज़ूम शय व मुक्तफी, किसी चीज के साथ जुड़ जाना और उस चीज में उस जगह पे वक्त गुजारना, मुक्त यानी वक्त गुजारना उस जगह पे। व फिल शर और शरअन एहतिकाफ का माना है नुज़ूम मस्जिद लिबादत अल्लाह तआला, किसी मस्जिद में अपने आप पर उसमें रहना लाजिम कर देना अल्लाह ताला के इबादत की नीयत से, किसी मस्जिद में रहने के लिए अपने आप पर लाजिम कर देना यानी वाजिब कर देना अल्लाह ताला के इबादत की नीयत से। और इसे हम दूसरे लफ्जों में उर्दू में कहते हैं मुजावरी, मुजावरी एहतिकाफ का दूसरा नाम है। तो याद रखें एहतिकाफ इबादत है, अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह ताला के घर का हक है। एहतिकाफ सिर्फ अल्लाह ताला के घरों में मसाजिद में होता है, जिसमें तफसील आगे बयान करूंगा। एहतिकाफ ना तो किसी पीर की कब्र के किया जाता है, ना कब्रिस्तान के किया जाता है, और ना ही किसी खास जगह को बाबरकत समझते हुए उस जगह की मुजावरी करना जायज है। अगर किसी ने